उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे

0: कुछ कहो भी हमसे लो ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
0: हाय

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फियांदे प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैहक द बेस्ट उजाला रेडियो

0: थोड़ा मस्ती, थोड़ा खुशी, थोड़ा हलचल उजाला रेडियो।
1: मैं क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में।

0: ना ना ना ना ना ना गुर छोड़ मुझे मत जाना, अरे ना ना ना ना ना ना गुर छोड़ मुझे मत जाना। प्यार से तेरा दिल भर देगा ये तेरा दीवाना, अरे प्यार से तेरा दिल भर देगा ये तेरा दीवाना, अरे ना ना ना ना ना ना ना ना ना।
1: लड्डू बोल लड्डू
0: लड्डू
1: लड्डू लड्डू लड्डू
0: लड्डू ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू। एक नजर है एक हंसी है कीमत किसके बंधु, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू। दिल का रंग जिगर के टुकड़े अरमानों का हीरा, दिल का रंग जिगर के टुकड़े अरमानों का हीरा, इनको लेकर बांधे लड्डू खाए दास कबीरा। रे पर देखो देखो आहा आहा, रे पर देखो देखो आहा, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू।
2: अबे हट, खाली जिसका पेट उसका प्यार से खाली बोल, और इस लड्डू में दुनिया का हर ऐश दिया है घोल। सब जय जय इसका बोल, सब जय जय इसका बोल, सब जय जय इसका बोल। सोने का लड्डू
0: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
0: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
0: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
0: प्यार का लड्डू,
2: सोने का लड्डू,
0: प्यार का लड्डू,
2: सोना
0: प्यार,
2: सोना
0: प्यार,
2: सोना
0: प्यार।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

प्यार का ये रंगीन जमाना याद रहेगा। उमर कैद फिल्म का नाम और आप गीत को सुने मुकेश जी एंड लता जी से। ये उजाला रेडियो है।

और इतना है तुमसे प्यार मुझे, फिल्म सूरज का गीत और गाने वाले मोहम्मद रफी के साथ में सुमन कल्याणपुर।

बन के साथी प्यार की राहों में हमसे कभी तुम ना जुदा होना। गीत आप सुने मोहम्मद रफी अंदर लता जी से, फिल्म स्वीटहार्ट से, और ये उजाला रेडियो है। एक और गीत आप सुनेंगे अब, आशा जी की आवाज में होंगे,

0: रे।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: You are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujana Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेयर इन्फॉर्मेटिव उजाला पिंध ने उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Kuch saaye, kuch parchhaiyan, kuch chahat ke sajde. Kuch behte baadlon pe rakhi umeedein, barasti rahin, tarasti rahin. Chaand aasmaan mein jade soraakh ki tarah jhaankta raha. Aur raat किसी अंधे कुएं की तरह मुंह खोले हांफती रही। रास्ते पांव तले से निकलते रहे, न रुके न थमे, न रोका न पूछा जिंदगी किस तलाश में है। जिंदगी थकने लगी है और ये जिंदगी का जुड़वां उसकी उंगली पकड़े शहर की नंगी सड़कों पर अभी तक कुछ बीन रहा है, कुछ ढूंढ रहा है।

जब से बलम घर आए तो जियरा मचल मचल जाए। लता जी की आवाज में गीत आप सुने, फिल्म आ

आपका वेलकम है हजरात। भूल के गोले उबम रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे, उन दिनों की बात है। तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का नाम और गाने वाले सोनू निगम एंड सरिका कपूर, इन दोनों से प्रोग्राम में गीत को आप सुने उजाला रेडियो। एक बार फिर सोनू निगम, इस बार सुनिधि चौहान के साथ।

सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान, इन दोनों से आप सुने कि जब से मेरे दिल को हुए उफ। फिल्म का नाम तेरी मेरी कहानी और स्टेशन उजाला रेडियो।

मून संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.net info@ujala.net

उजाला रेडियो के जरिए भी आपने सुने हैं सविता सिंह एंड साधना लीला की आवाज में गोल गप्पा का नगमा पेश किया गया है। हम ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं और यहीं से ला रहे हैं आप लोग की फरमाइश। हेलमोन के रहने वाला अंश ईशान भागोला के कल मुंडन संस्कार है। हेलमोन में रहते हैं अंश ईशान भागोला का मुंडन संस्कार एतवार 24 तारीख मई होने वाला है। मुंडन संस्कार के पर बधाइयां शुभकामना पेश किया जा रहे हैं। भगवान से प्रार्थना किया जा रहे हैं कि छोटे से अंश ईशान भागोला को हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे। भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है लंबी आयु के वास्ते। हेलमोन के रहने वाला अंश ईशान भागोला का कल मुंड संस्कार है। इस मुंड संस्कार के उपलक्ष्य पर पापा किरण भागोला और मामा दनिशा भागीरथी प्यारा प्यारा बेटा के वास्ते और बहन ईशा भाई के लिए बधाई शुभकामना प्यार और दुलार के साथ पेश है।

हेलमुंग के रहने वाला अंश ईशान भागोला का कल मूंड संस्कार है। मूंड संस्कार के वर्ष पर पापा किरण भागोला एंड मामा धनीषा भागीराथी प्यार प्यारा बेटा के लिए बहन ईशा भाई के वास्ते बधाई शुभकामना प्यार दुलार के साथ फरमाइश के। हेलमुंग के रहने वाला छोटा सा नन्ना सा अंश ईशान भागोला का कल मूंड संस्कार है। खुशी के मौके पर पापा किरण भागोला एंड मामा धनीषा भागीराथी प्यार प्यारा बेटा के वास्ते बधाई शुभकामना प्यार दुलार आशीर्वाद के साथ पेश है।

उनके रहने वाला अंश ईशान भागोला का कल मुंडन संस्कार है। खुशी के मौके पर पापा किरण भागोला एंड मामा दनिशा भागीरथी प्यारा प्यारा बेटा के लिए बधाई शुभकामना आशीर्वाद के साथ फरमाइश के। हेलमुंड के रहने वाला नन्ना सा प्यारा सा अंश ईशान भागोला का काम कल मुंडन संस्कार है। मुंडन संस्कार की खुशी के मौके पर पापा किरण भागोला एंड मामा दनिशा भागीरथी प्यारा प्यारा बेटा के वास्ते बधाई शुभकामना प्यार दुलार आशीर्वाद के साथ पेश करें।

Helmond kjer hin wala ans isan bhagola ka kal moon sanskar hai khushi ki mauke par papa kiran bhagola and mama danisha bhagirathi pyar pyara beta ke waste badhai shubhkamna aashirwad ke sath farmaish ke अंश ईशान भागोला का कल मुंड संस्कार है एतवार 24 तारीख मई को खुशी के मौके पर सूत्रमेर और आइंदहोवन के रहने वाले आजा सुभाष भागोला और आजी गीता भागोला सहतू पोता के लिए पर नानी रुक्मीन जिबोध सहतू पर नाती के लिए पापा किरण भागोला और मामा दनीशा भागीरथी बेटा के लिए बहन ईशा भाई के लिए दो फुआ अश्विनी और सिमरन एंड काका कवेश भागोला बेटा के वास्ते काकी शरीसा रामचरण एंड फुफा संजय सुखचंद और फुफा होने वाले फुफा रोहन रामजवान के तरफ से बेटा के लिए और दो भाई अक्षय और वीरेन की तरफ से भाई के लिए बधाई शुभकामना प्यार दुलार के साथ पेश करें।

Helmond keer heen. Voilà, Angse, Ishaan, Bhagola, Kakal, Moendens en Skaar Heer. Goesje gemaakt per Soetermeer. Or Eindhoven keer heen. Welle Aja, Subhaas, Bhagola. Or Aji, Gita, Bhagola, Sahitu, Bota Kleem. Per Nani, Rukmin, Jibot, Sahitu, Per Nati Kleem. Papa Kieran, Bhagola. En mama Danisha, Bhagirati, Beta Kleem. Behen Isha, Bhai Kleem. Dophoa, Ashmini, Or Simran. Or Kaka, Kavesh, Bhagola. Beta Kivaste, Kaki, Sharisa, Ramcharan. Puppa, Sanjay Sukchan और होने वाले फूफा रोहन रामजवान के तरफ से बेटा क्लेम दो भाई अक्षय और वीरेन की तरफ से भाई के लिए बधाई शुभकामना के साथ नामा को फरमाइश के हेलमोंड के रहने वाला छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा अंश ईशान भागोला का कल मुंडन संस्कार है खुशी के मौके पर आजा सुभाष भगोला और आजी गीता भगोला सहतु पोता के लिए बधाई शुभकामना और आशीर्वाद के साथ पेश है

अंश ईशान भगोला का कल मुंडन संस्कार है खुशी के मौके पर। आज यहाँ सुभाष भगोला और आज गीता भगोला सहतु पोता के लिए बधाई शुभकामना आशीर्वाद के साथ फरमाइश के। अंश ईशान भगोला का मुंडन संस्कार कल है हेलमोल में जो रहते हैं खुशी के मौके पर। आज यहाँ सुभाष भगोला और आज गीता भगोला सहतु पोता के लिए बधाई शुभकामना और आशीर्वाद के साथ पेश है।

एल्बम के रहने वाला प्यारा सा नन्ना सा छोटा सा अंश ईशान भगोला का कल मुंड संस्कार है खुशी के मौके पर। आजा सुभाष भगोला और आजी गीता भगोला सहतु पोता के लिए बधाई शुभकामना के साथ आशीर्वाद के साथ फरमाइश के। अंश ईशान भगोला का कल मुंड संस्कार है, पूरा परिवार के साथ मुंड संस्कार कल होने वाला है। खुशी के मौके पर आजा सुभाष भगोला और आजी गीता भगोला सहतु पोता के लिए बधाइयां शुभकामना आशीर्वाद के साथ पेश करें।

ये रहने वाला अंश ईशान भागोला का कल मुंडन संस्कार है, कल मुंडन है, खुशी के मौके पर आजा सुभाष भागोला और आजी गीता भागोला सहतु पोता के लिए हार्दिक से बधाई और शुभकामना आशीर्वाद के साथ फरमाइश के। हेलमोन के रहने वाला अंश ईशान भागोला का कल मुंडन संस्कार है और इस मुंडन संस्कार के खुशी के मौके पर दो फुआ अश्विनी और सिमरन और काका कवेश भागोला बेटा के लिए बधाई शुभकामना आशीर्वाद प्यार दुलार के साथ पेश करें।

कल मून के रहने वाला है अंश ईशान भागोला का कल मुंडन संस्कार है। इस मुंडन संस्कार के खुश के मौके पर दो फुआ आश्मिनी और सिमरन एंड काका कवेश भागोला बेटा के वास्ते बधाई शुभकामना और प्यार।

कल जबकि इतवार 24 तारीख में है तो हेलमोन के रहने वाला अंश ईशान भागोला का मुंडन संस्कार होने वाला है। इस खुशी के मौके पर भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है लंबी आयु के वास्ते ताकत तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना की जा रहा भी। भगवान से यही प्रार्थना है कि छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा अंश ईशान भागोला को हमेशा खुश रखे तंदुरुस्त रखे अंश ईशान भागोला को। परिवार भगोला फरमाइश अभी हम जारी करने वाले हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद जरूर सुन लेना। सुन वालों उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश देना है 59 फ्राग फॉर मार 100 यूरो ऑफ यू आर उजाला रेडियो। स्टूडियो ईमेल ना info@ujala.nl।

इतना प्यार दुलार के साथ फरमाइश किए। अंश ईशान भगोला का मुंडन संस्कार कल होने वाला है और इस खुशी के मौके पर फरमाइश कर रहे हैं प्रोग्राम में आजा सुभाष भगोला और आज गीता भगोला सहतो पोता के लिए दो फुआ अश्विनी और सिमरन और काका कवेश भगोला बेटा के वास्ते बधाई शुभकामना आशीर्वाद के साथ पेश है।

0: उनके रहने वाला अंश ईशान भौगोला का कल मुंडन संस्कार है खुशी के मौके पर। आज सुभाष भौगोला और आज गीता भौगोला सहतु पोता के लिए दो फुआ अश्विनी और सिमरन और काका कवेश भौगोला बेटा के वास्ते बधाई शुभकामना और आशीर्वाद के साथ फरमाइश के।
1: मामी काकी मौसी सब कहाँ है भैया? पंडित उठ के बोलैले की ना, नौवा के बोलैले की ना, लड़का के मुरन है।
0: हेलमोन के रहने वाला अंश ईशान भौगोला का कल मुंडन संस्कार है खुशी के मौके पर। आज सुभाष भौगोला और आज गीता भौगोला सहतु पोता के लिए दो फुआ अश्विनी और सिमरन और काका कवेश भौगोला बेटा के वास्ते बधाइयां शुभकामना आशीर्वाद के साथ पेश करें।

मून ने संस्कार है खुशी के मौके पर नाहमा को फरमाइश के आजा सुहास भगोला और आजी गीता भगोला सहतु पोता के लिए दो फुआ अश्विनी और सिमरन और काका कवेश भगोला बेटा के वास्ते बधाइयां और शुभकामना आशीर्वाद के साथ पेश किए। हेलमोन के रहने वाला प्यारा सा नन्ना सा छोटा सा अंश ईशान भगोला का कल मून संस्कार है खुशी के मौके पर इस बार फरमाइश करने वाले हैं काका कवेश भगोला और काकी शरीशा रामचरण बेटा के वास्ते बधाई शुभकामना आशीर्वाद के साथ।

0: हेलमोन के रहने वाला अंश ईशान भगोला का कल मुंड संस्कार है। कल इतवार 24 मई को और इस खुशी के मौके पर काका कवेश भगोला और काकी शरीशा रामचरण बेटा के वास्ते बधाइयां और शुभकामना के साथ फरमाइश के। अंश ईशान भगोला का कल मुंड संस्कार है खुशी के मौके पर। एंडहोवन के रहने वाले हैं फुआ अश्विनी सुखचैन और वो भी फुआ अश्विनी सुखचैन भगोला एंड फुफा संजय सुखचैन बेटा के वास्ते, दो भाई अक्षय और वीरेन भाई के वास्ते बधाइयां शुभकामना प्यार दुलार के साथ पेश है।
1: चलो

हेलमोन के रहने वाला अंश ईशान भगोला का कल 24 तारीख मई को मुंड संस्कार है। खुशी के मौके पर नहमा को फरमाइश के एंडहोफ के रहने वाले हैं। हुआ अश्विनी सुखचैन भगोला और फूफा संजय सुखचैन बेटा के वास्ते, दो भाई अक्षय और वीरेन भाई के वास्ते बधाइयां और शुभकामना के साथ फरमाइश के। हेलमोन के रहने वाला अंश ईशान भगोला का कल मुंड संस्कार है और इस खुशी के मौके पर नहमा को फरमाइश कर रहे हैं आजा सुभाष भगोला और आज गीता भगोला सहतु पोता के लिए बधाइयां शुभकामना और आशीर्वाद के साथ।

हेलमोन के रहने वाला अंश ईशान भगोला का कल मुंड संस्कार है खुशी के मौके पर। नहमा को फरमाइश के प्रोग्राम में आजा सुभाष भगोला एंड आजी गीता भगोला सहतु पोता के लिए बधाई शुभकामना प्यार दुलार आशीर्वाद के साथ। प्रोग्राम में आखिरी फरमाइश हेलमोन के रहने वाला छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा अंश ईशान भगोला का कल मुंड संस्कार है खुशी के मौके पर। सूत्रमेर और एंडहोफ के रहने वाले हैं आजा सुभाष भगोला और आजी गीता भगोला सहतु पोता के लिए। पर नानी रुक्मीन जीबोत सहतु पर नाती के लिए पापा किरण भगोला और मामा दनीशा भागीराथी बेटा के लिए। बहन ईशा भाई के वास्ते दो फुआ अश्विनी और सिमरन एंड काका कवेश भगोला बेटा के वास्ते। काकी शरीशा रामचरण एंड फुफा संजय सुखचैन और होने वाले फुफा रोहन रामजवान के तरफ से बेटा के लिए। दो भाई अक्षय और वीरेन की तरफ से भाई के लिए बधाइयां शुभकामना प्यार दुलार आशीर्वाद के साथ पेश है।

हेलमोन के रहने वाला अंश ईशान भगोला का कल मुंड संस्कार है। इस मुंड संस्कार के खुशी के मौके पर सुतमेर और एंथोव के रहने वाले हैं आजा सुभाष भगोला और आजी गीता भगोला सहतु पोता के लिए, पर नानी रुक्मीन जीबो सहतु पर नाती के लिए, पापा किरण भगोला एंड मामा दनीशा भागीराती बेटा के लिए, बहन ईशा भाई के लिए, दो फुआ अश्विनी और सिमरन एंड काका कवेश भगोला बेटा के लिए, काकी शरीशा रामचरण एंड फुफ्फा संजय सुखचैन एंड होने वाले फुफ्फा रोहन रामजवान की तरफ से बेटा के लिए, एंड दो भाई अक्षय और वीरेन की तरफ से भाई के लिए हार्दिक से बधाएं शुभकामना के साथ ये नहमा को फरमाइश किए। हेलमोन के रहने वाला छोटा सा नन्ना सा अंश ईशान भगोला का कल मुंडन संस्कार है। इस मुंडन संस्कार के उपलक्ष्य पर हार्दिक से बधाई शुभकामना पेश किया जा रहा है उजाला रेडियो के फुल टीम की तरफ से, और ये भी भगवान से प्रार्थना है लंबी आयु के वास्ते ताकत तंदुरुस्ती के लिए, और ये भी प्रार्थना है कि छोटा सा नन्ना सा अंश ईशान भगोला को छोटा सा अंश ईशान भागोलो को ऊपर वाला भगवान हर एक बीमारी से हर एक मुसीबत से दूर रखे। छोटा अंश ईशान भागोला को ये मुंडन संस्कार जो कल होने वाला है बारंबार बधाई हो। उजाला रेडियो के जरिए जितने से फरमाइश था समाप्त होने पर आए हैं। उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश सुनने देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद समस्त परिवार भागोला। आज के

सुन वालो उजाला रेडियो के जरिए अगर आपको फरमाइश देना है स्टूडियो ईमेल ना info@ujala.nl आपके फरमाइश के लिए 15 आवाज फॉर मार 100 यूरो ऑप उजाला रेडियो टू एक हिदम एक ईमेल भेज naar info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

यू आर उजाला रेडियो ये है सुनने वालों हरी कामकाज के लिए चेक ऑन से वेबसाइट उजाला पे इंटरनेट सनीचर है सनीचर 23 तारीख मई का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो पर यहां तक आपने सुने हैं हमने पेश किए हैं प्रोग्राम मैं हूं लॉयड महावीर एक वेंस यूली अलमाल एन हेले फाइन दाग फाइन वीकेंड फाइन पिंगस्टर वीकेंड हेट वर्ड मोई वीर हेट वर्ड वर्म लेट ऑफ द किंडर लेट ऑफ द आउचेस एंड ब्लाइव ड्रिंकन है

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवराजे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl, 15 आवराजे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

कैसे लगा आपको द बेस्ट ऑफ द 90s फनाहो के मैं प्लेलिस्ट द एस्ट 70s हैव कोक ओरिजिनल ऑफ द ड्राइट ऑफ रेडी दी कम तरान फन मोहम्मद रफी विद द फ्रेजिंग सेन रोन दिस यू फन द मिडनाइट हियर ऑफ ट्रेंडी इवन इन टाइम चेक इट इज 5:30 इन नीदरलैंड जहां भी आप प्रोग्राम को सुनत होंगे हालन में हालन से बाहर रूपा में रूपा से बाहर सारे विश्व में श्वेती सरनांग कोंद्रे में फील फ्री टू सेंड अस एन व्हाट्सएप मैसेज इन द स्टूडियोस ऑन 020-020-363-0808-0808 You're most welcome in the hit zone. Ik heb twee goede dance tracks voor je en we doen even deze Kherpe Party hey van Bacha, Ashtagil en Mellow D. Maak er een leuke party van.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा

यकीन इनके साथ दिल को छू कहते हैं और घुस जाते हैं तो दिल में ऐसा मौसम में हमसे तो पूछ फीतना दिल सॉन्ग द न्यू फिल्म भूत बंगला एर पॉपुलर ऑन फैक्ट्री डेड मशीन फन उजाला रेडियो यो हो द तू ही दिसदा निकिता गांधी एंड अरिजीत सिंह I kept the best of the 70s fair ready and it is Kishorda on the beat of Shankar and Jai Kishan met het prachtig lied uit de film Aqua Kome or Gana Kabul hai Teri Umar Nadan hai.

बस कर बस कर इतनी सी बात अभी चांद एलित कांत बीच बिगिस मापा कुमुत एक सह एलित म्यूजिक वार म्यूजिक कैनस ऑन फन हैब खनोट वास कहें लग सोनू निगम एं श्रेया घोषाल हेल अपार्ट देस साउंडट्रैक टू से आल दी हिट्स डोर द फिल्म सैम बहादुर एन फिल्म आउट इट यार 2023 इतनी सी बात De Hit Zone, ik zit eraan tot 7 uur vanavond. En na mij neemt hij het over om 5 over 7 Rutten Ramdoula Ripandé met zijn Saturday Night Fever, The Late at Midnight. Ondertussen gaan we even lekker swingen met deze 90s Dilmera Chalte Chalte. Een bekende pokoe van Udit en Elka komt uit de film Bekaboe.

मोहम्मद रफी आपको सुनाए तमाम मुस्लिम भाई और बहनों के लिए जो आने वाले बुधवार मई की 27 तारीख ईद उल अजहा मनाएंगे सारे विश्व में मशक्कत के साथ। दिल दिल दिल वॉज सुपर पॉपुलर फोर हियर एंड द साउंडट्रैक कम फ्रॉम सुनिधि चौहान एंड देवी कुमार द फिल्म एक दीवाने की दीवानियत। एंजॉय इट इन द हिट जोन।

Ek heb een prachtige Down Memory Lane vir jy ready. An everlasting soundtrack by Sangeet Kidevia Shadidi en Mohammed Rafi. Een bekende pokoe en komt uit de film Harikaj Ki Churiya, waar die original soundtrack op de draaitafel hem aapko sunayenge. ऐसन मौसम में हमसे तो पूछ दिल को छू करते हैं और घुस जाते हैं तो दिल में सुन गाना

जुनून से भरा हुआ फल पसी। सुन गाना आपके आहें न भर जाए, चुन लिया मैंने तुम्हें।

7:07 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, ये उजाला रेडियो है और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। आज शनिवार है मेरे प्यारे सुनने वालों, 7/23 तारीख है और वो भी मैं 23 मई साल 2026। स्टूडियो रतनाम से पेश कर रहा हूं प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। स्वागत आप सभी को हम करते हैं, आप जहां पर भी होंगे, जिस हाल में आप होंगे, तहदिल से स्वागत है आप सभी को। रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाबर्स है। शुभ वीकेंड, एंजॉय योर वीकेंड। और क्या मौसम है मेरे प्यारे सुनने वालों, जिस तरह होना चाहिए वैसे ही है आज का ये मौसम, कल भी था और कल भी रहेंगे। एंजॉय। सैटरडे नाइट फीवर मेरे प्यारे सुनने वालों, नए पुराने लोकल सॉन्ग्स के साथ आपका दिल फिर एक बार हम बहलाएंगे और वो भी रात्रि में 12 बजे तक, 5 घंटे। बस आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए और आपका दुलार चाहिए। मुझसे पहले सुंदर सा प्रोग्राम हमेशा की तरह शनिवार को बनाए आप सभी के मनोरंजन के लिए। 4 बजे से 7 बजे कुलीखा बड़का भैया सतीश रामदास मिसिर जी, हमने तो एंजॉय किया है हमेशा की तरह। बस यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने भी एंजॉय की है। सतीश खत लेकर खनी तूफान सन पिंकस्टर वीकेंड और भैया जी को हम कहेंगे थैंक यू, वेल धन्यवाद, शुक्रिया। All tight fine om your stem to hoor. Young and dashing fresh. Tu jane toch. Enjoy your weekend bhaiya. Aur is shanivar ka mere pyare sunal jo aakhri 5 ghante bache hain aapka aur mera saath rahega. Mauka diya ja raha hu. Hamesha ki tarah hum aapko mauka diye ja rahe hain studio mein app karne ke liye. और जो लोग हमेशा ये कश उठाते हैं उन सभी के नाम से एक लोकल हम चलाते हैं। दूसरी रत्नी ज्ञान खाए खोमा दस द लोकल सराय मसौंदर नाम नचूलक नती सौंद मौका जब मिले है तो फायदा उठाओ। 020-363-0008 जो आखिरी 5 घंटे बचे हैं आपका और मेरा साथ रहेगा। मौका दिया जा रहा हो हमेशा की तरह हम आपको मौका दिए जा रहे हैं स्टूडियो में ऐप करने के लिए। और जो लोग हमेशा ये कश उठाते हैं उन सभी के नाम से एक लोकल हम चलाते हैं। दूती रत्नी ज्ञान खाए खोमा दस द लोकल सराय मसौंदर नाम नचूलक नती सौंद मौका जब मिले है तो फायदा उठाओ। 020-363-0008 020-363-0008

और आप कहां से ऐप कर रहे हैं, बस ये कहना अहल काफी है, लेकिन आपको भी मौका दिया जा रहा है ये कहने के लिए ऑफियन स्नेल नंबर विल ऑफर रिस्टा। तो आप व्हाट्सएप करें 02303-0008 लगातार। और मेरे प्यारे सुनाल, आपको ये भी मालूम रहे कि आपकी फरमाइश है जरूरी खबरें मौत की खबरें के लिए, दिन सख से आप फिर दफ्तर को तार कर पाओगे। वो मानख नतुलक खसलोते फवी ट्वेल्थ पिंक्सडाग। तो दिन सख से सातडाग सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक आपकी फरमाइश है जरूरी खबरें, जो भी आप करवाना चाहेंगे, जब भी आपको उजाला रेडियो की जरूरत पड़े और तार के जरिए हमें कांटेक्ट करना चाहेंगे तो ये मुमकिन है। वही दफ्तर के दिन और दफ्तर के वक्त दफ्तर के तार पर 02-409-0807, 02-409-0807। लेकिन आपके कामकाज के लिए आप जब भी चाहोगे आप मेल कर सकते हैं, क्योंकि मेल जो है आप रोजाना कर सकते हैं 24 घंटे 7 दिन लगातार। आप जहां पर भी रहिए, इन न्यूजीलैंड ऑफ इन अलास्का, जब भी आपको जरूरत पड़े वो उजाला रेडियो को आप अवश्य मेल करें info@ujala.nl। और मेरे प्यारे से नौलो, हमेशा शनिवार को आपको बताता हूँ, और कई लोग भी जुड़ गए हैं उजाला रेडियो के साथ, आप भी जुड़ना चाहते हैं और हमारा दोस्त बनना चाहेंगे सोशल मीडिया पर, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब पर, तो वहां जाकर कनेक्ट हो जाइए उजाला रेडियो के साथ। तरह तरह की सूचनाएं जो हम छापते हैं आप पढ़ पाओगे, अपना कमेंट्स दे पाओगे, किसी को टैग कर पाओगे और वो सूचना भी आप बांट सकते हैं अपने लाइन पर। तो गेट कनेक्टेड विद उजाला रेडियो ऑन द सोशल्स और अबोने रहिए ऑफ उजाला रेडियो ऑफ यूट्यूब। हीरे जो हम वहां पर अपलोड करते हैं आप सुन पाओगे और शायद डाउनलोड भी कर पाओगे। इन्हीं खफाल का है इस तरह। ओके मेरे प्यारे सुनने वालों, हम शुरू करेंगे आज के प्रोग्राम। आपको ये भी मालूम रहे कि जो लोग ऐप करेंगे स्टूडियो में, हमेशा की तरह 8 बजे के बाद आपके लिए गीत हम चलाएंगे 8 बजे के बाद, और जिस तरह से ऐप आएंगे अंदर उसी हिसाब से भी लोगों के लिए गीत हम चलाएंगे। हाँ, नीमन फोर्ट्रेक एंड देरी से तू ऐप करिए। तन्ना जी ये पूछे कि ए भाई कब हमारे गनवा आए, तो देरी से भी आए तू जाने तो, हमें सुलत ना दिए यार तू जाने तो, ना ये हमें मारे नहीं। एंजॉय योर वीकेंड मेरे प्यारे सुनने वाला। यहाँ मैं देखता हूँ साउटिन मिक्स, अरे भैया

या धमाकेदार साउथ इन मिक्स मेरे प्यारे सिनेमा सेवा में पेश हुआ है आज का ओपनिंग सिलेक्शन हियर ऑन यू आर और 10 मिनट बाकी हैं सरे 7 बजने में 3 मिनट फुट क्लॉक फन हाल अफा आप ही का मन चाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे और फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी को या वॉज एफ स्वीट हियर मैन अचेस न्यू लेकर कूल हो गए माँ बहुत गर्म यहाँ स्टूडियो के जो आईने हैं वहां से इस वक्त ये घाम जो है सूरज जो है वहां से अंदर आते हैं एंड दैट इज वेल यमर वन दन हैप्पी एक्स्ट्रा वार्म हियर हालांकि राम ओप साइन मरम ब्लास्टी तो गर्म हवा मारे तेज न्यू लेकर कूल मेरे प्यारे सुनो लो रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब से फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी को सैटरडे नाइट फीवर पेश कर रहा हूं एकदम लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रोटरडम से और जब भी मौका मिलता है शनिवार को अलसत खान एमानेरत मख दन बेनेकर और आपका दिल बहला रहा हूँ विद ब्यूटिफुल लोकल्स और आज सेवा में बहुत सारे नए इस साल का और जो आज रिलीज हुए हैं कल रिलीज हुए हैं पिछले हफ्ते रिलीज हुए हैं मार कुछ पुराने भी हम आप तक पेश करेंगे तू जाने तो कैसे हम प्रोग्राम में हरदम जंप फुट करेला कभी ऊपर कभी नीचे 020-363-0008 जहां पर सब कोई ऐप कर सके हैं और एक गीत हम ड्राई कर ली और इतने जाना हम देखे ला इतने जने हमें ऐप करी से कि अब तू ऐप करिए तो तोर गाना जो है गनवा तोर हम ड्राई करब सीकर वही तो 9 बजे के बाद वन 8 बजे से 9 बजे वो ब्लॉक को एकदम फॉलो है तू जाने दमियान खराब ना करे तो तो मेरे प्यारे सुनने वालों आप भी चाहते हैं 020-363-0008 एंड लाते हैं अली मार ऑफ द ऐप हैव ओवर द प्रोग्राम दफ्तर की कार्रवाई मेरे प्यारे सुनने वालों आप दफ्तर के दिन दफ्तर के वक्त दफ्तर के तार पर करें जस्ट नीट ना द स्टूडियो डार ओवर ऐप बेल मेट Met kantoor is 020-409-0807. Or ja, dat kan vanaf dinsdag mangelwaard zijn. Sanniwaardig. Jonki, somoharko bedaki. To suba met 10 budget, ja, met 10 budget. 020-409-0807. Maar toen na mangje gore, to jane toch mailwa kerde. Want mailwa, ja, pi tu mangje, tu mailker seke. info@ujala.nl. अमरीश भोला सिंह अरे बाप रे एक मैशअप ये भी गाएंगे है नहीं मैशअप चलिए सुनिए

या अमरीश भोला सिंह मेरे प्यारे सुनने वालों, कोई बुलाए और कोई आए, वो ये सॉन्ग है, कोई बुलाए और कोई आए, मुकेश का एक नगमा। और मैं देखता हूँ घड़ी की तरफ मेरे प्यारे से नौ खाते चल एरक्सनल लोड, लेकिन आप ऐप कर रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, हम तो सोचिए आज कोई ना ऐप करी, विरवा इतना 20 साल सब चल गए स्ट्रांड घूमे वूमे, और जैसे मोयवेर रहे तब बहुत फेस वेस भी रहे, मतलब बहुत लोग ऐप करे ऐप करे। और एगो बोलिल है कि पहले रतन को हम सुनीला ओकरे बाद हम जाला घूमे, तू खराब करत हुई है मात मखवेल खिलवाड़ तू कर सके है, मैं हम ना विश्वास करी ला आनो कांग। ब्रायन मोहन मेरे प्यारे सुनवालो, और अफिशा की आवाजें, ये गीत इन दोनों ने मिलकर भी सजाए हैं, बनाए हैं, आप तक पेश कर रहा हूं। और अभी जेरी खयाम का एक नगमा आप तक पेश करेंगे। सैटरडे नाइट फीवर है ये मेरे प्यारे सुनवालो, लाइव फन यू आर स्टूडियो रोटरडम।

0: जेरी खयाम मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं सैन अर्बन मैशअप। कल मेरे प्यारे सुनने वालों, आज तो लोगों की सेवा हम करेला, लेकिन कल मैंने भी सोचा है अगर मौसम ऐसा रहा दखा एक लेकर उगवान ले, मैं तू जाने हम स्तरांत वरांत ना जाएला, फिल्स तो वारम और हम पारासोल के नीचे लेट के मजा ले ना, दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी। दोस्त दात खातम नहीं वोर्ड, मेरे प्यारे सुनाल, आप जब ऐप करेंगे अब 020-363-0808, वर्गीत नहीं यह नाम, आप कहां से ऐप कर रहे हैं और किस तरह का नगमा आप चाहते हैं। अंसनेल ऑफन सोल नंबर, अलमा लोकल्स, खीन ओरिजिनल फिल्म सॉन्ग्स मालूम रहे, दिस खीन टाइटल्स दोरगेव। इगी जो आज और कल रिलीज हुआ है, कल वाला हम पेश करते हैं, अति सेल्फ द नंबर, लेकिन तुफालग दुई फर्स्खिलंद संगरेसे, जो कल रिलीज भाईल है, आज वाला अब भी छोड़ दे लातर साइड, हम जायला ट्राई करे तुलों खाद, ये है रिहाना, सम ट्रिनी पॉप हीर ऑन यू आर।
1: रिहाना

Ya, Rihanna, Rihanna. इनका वर्जन हमने पेश किया है, ये कल रिलीज हुआ है और आज जो रिलीज हुआ है वो काकड़ सुनाएंगे आरती सुखाई खिलावन और वही नगमा है। पेश करता हूँ नमाखी सेल्फ बसले सर के और मोई से गायल। आज तुलुंग शूरी बातें जुली सैंड शूरी

था आरती सुखाई खिलावन का फैशन। आप श्यूरी है, आप ही बताइए। हमारे ये प्रोग्राम में जो भी कोशिश करते हैं अच्छे गाने के लिए, उन सभी को पेश किया करता हूँ अपने प्रोग्राम में, क्योंकि पसंद हर एक का अलग अलग होते हैं। वह बालमाल फर्स्ट खिलन स्मार्क

Beach Musiven ada Dur Kui Belkadil Beach Program me. Hai mi paya. Tu mi repiare se nola 020-363-0008 per aapko app karna hai. जो लोग ये कश उठाएंगे उन सभी के नाम से गीत हम चलाएंगे अभी 8 बजे की इश्तिहारों के बाद और जिस तरह से ऐप आए हैं अंडर उसी के हिसाब से हम गीत आप सभी के लिए चलाएंगे बस आप सभी से ये रिक्वेस्ट है हैव पेशेंस क्योंकि लिस्ट काफी लंबा चौड़ा हो चुका है आपका गीत हम जरूर से जरूर चलाएंगे दिस वेज नीट ongeduldig आप देरी से ऐप किए हैं तो देरी से भी आपके ऐप हम पेश कर पाएंगे दिस हैप फॉर ऑल गेडुल्ड मैं देखता हूं ये जो गाने वाले हैं आप सभी के लिए इंदर कन्हाई

ब्रायन मोहन मेरे प्यारे सुनो, जग लाल लाल लाल लाल लाल देखे है मुझको। मेरे प्यारे सुनो, इस घंटे का आखिरी गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ और इस गीत के बाद 8 बजे के इश्तिहारे की ओर हम बढ़ चलेंगे। इश्तिहारों के बाद हम फिर हाजिर रहेंगे, सेवा करने फिर हम हाजिर रहेंगे आप सभी के लिए लेकर ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। और तब हम जाकर देखेंगे कि कौन है जो लोग ये कश उठाए हैं ऐप करने के लिए स्टूडियो में, उन सभी के नाम से गीत चलाना शुरू करेंगे। फुल कोर्ट ऑफ अम्बेन को फंड एपियस, और जैसे मैंने कहा हेप फॉर ऑल खदूल मेरे प्यारे सुनने वालों, ये सागर मलिक।

कभी खुशी कभी गम ना जुड़ा होंगे हम। ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, 10 मिनट गुजर चुके हैं और वो भी 8 बजकर। एक शुभ रात्रि आप सभी को हम कहते हुए, एंजॉय योर वीकेंड। शनिवार है, लंबा वीकेंड है बहुत सारे लोगों के लिए, पिंक स्टार वीकेंड। और जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे प्रिय सुनने वालों इस वक्त काम पर है, कभी खुशी कभी गम ना जुड़ा होंगे हम। ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, 10 मिनट गुजर चुके हैं और वो भी 8 बजकर। एक शुभ रात्रि आप सभी को हम कहते हुए, एंजॉय योर वीकेंड। शनिवार है, लंबा वीकेंड है बहुत सारे लोगों के लिए, पिंक स्टार वीकेंड। और जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे प्रिय सुनने वालों

कोई टैक्सी चलाता है, कोई ट्रेन चलाता है, बस चलाता है, अस्पताल में काम करता है, ऑफ ऑफ द लुखावन सिकंड हाउस में, फॉरऑल सिकंड हाउस में ब्रूडर्स हमारा, तो दिल लगाकर काम करना है एंड मोहर द लीचेस फॉर यूली अरबेज विटामिन साइन लाच नीत नान नचिए बचिए तो सब जान जाए कि तू फोकस ना बाते कम हुआ पे मा वैलू जला रेडियो पर फॉरऑल कोई किस पोईती वोईती जब जाइए दे रहे तो मुड़िया ना हिलाइए, हटवा भी ना हिलाइए, गुरवा भी ना हिलाइए, स्टेडी मेरे प्यारे सुनने वालों, यहां से एपर्स के लिए हम गीत चलाना शुरू करेंगे और जिस हिसाब से ऐप आए हैं अंडर उसी हिसाब से गीत हम चलाएंगे। हैव टू ऑल्सो बी गेडुल्ड यू हैव नीड टू ऐप अनदर स्टूडियो की कब हमारे गनवा आए तो गाना आए सही कर रही था। पहला गीत जो है आइलिन जी के लिए हार्लेम शहर का। आइलिन जी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपके ऐप के लिए। Enjoy your weekend. और मैंने गीत को तैयार करके रखा है आइलिन जी, तुम्हें तो आशा हम करते हैं कि आप पसंद करेंगे, बस आपके नाम करता हूँ।

ब्यूटीफुल मेरे प्यारे जनल और किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागिद हुसैन और उनके छोटे भाई फासिल ऑफ द जैक। ये उजाला रेडियो है मेरे प्यारे सिनेवालो। एपर्स के नाम गीत हम चला रहे हैं। पहला गीत आइलिन जी के लिए था, आप भी चाहते हैं कि आपके नाम से गीत मैं चलाऊं? तनमुटू एप नार 020-363-0000 तू हुआ ऐप करिए, अपन नाम बताइए तू कहाँ से ऐप करे है और तू कौनसी मांगे है, एगो चलता नगमा ऑफ एगो सोल। ठीक है, स्वागरी राज नंदन और आरती नंदन प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं अलमेर बैठ में, तो एंजॉय योर वीकेंड राज जी और आरती जी। एक गीत आप दोनों के लिए तैयार करके रखा है, अमोई जैसी स्टूडियो ब्लू ब्लूज मावेल मेटन मोए सॉन्ग इन एन जैज ब्लूज वर्जन।

क्या करें जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, और जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ब्यूटीफुल नगमा फिर से जो सजाया गया है जैसी ब्लू स्टाइल में हमने आप तक पेश किया है। 7 मिनट बाकी है मेरे प्यारे सुनने वालों, सरे 8 बजने में 7 मिनट 4 o'clock फन हाल ऑफ नेक। अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे, और गीत जो है हम नाम करेंगे बरीदा शहर में जो रहती है और जिन्होंने ऐप किए हैं गायत्री। डंकी वाल गायत्री आपके ऐप के लिए एक मेटली है, डिफरमासी नो मर्जी फ्रॉम सूरीनाम। ये गीत गायत्री के नाम और बरीदा।

या द फॉर्मेशन नो मर्सी मेरे प्यारे से वालों, ये था विनेश और प्रवेश एंड नटुलक रेंडी। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, हर एक इंफॉर्मेशन के लिए www.ujala.nl www.ujala.nl। हमारे प्रिय शहर में स्कीफनिंग शहर से भी ऐप आए हैं, जहां भैया लक्ष्मण जी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। तो भैया लक्ष्मण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। लेकर फरतूफदार बैठ स्ट्रांड माई फेवरेट स्ट्रांड एंड बुलेवार Scheveningen। और भैया लक्ष्मण जी, आप तो जानते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे दिलों में है। एक गीत हमने तैयार करके रखा है, आपके नाम करता हूं, एंजॉय।

चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। खूबसूरत गीत सेवा में जो पेश हुआ है मेरे प्यारे सुनो हीरो निवार सैटरडे नाइट फीवर मैं रतन लाइफ एंड हर एक यूआर के स्टूडियो रतनाम से जो आप तक पेश हो रहे हैं। हेमंत अनीता, ik heb jullie bericht ontvangen. Ik weet niet wat er misgaat met de app, maar आप लोगों के बरिख मुझे मिला है, बस आप इंतजार कीजिएगा, बहुत दुरुक है। आप लोगों के लिए भी हम गीत जरूर से जरूर चलाएंगे। Dus heb geduld, ik heb bericht ontvangen. Het komt allemaal goed. Geduld hebben, ठीक है? हम Den Haag की ओर बढ़ चलते हैं, वहां पर उषा जी रहते हैं और उनके ऐप आए हैं और उषा जी डंकेवेल हमेशा सपोर्ट करने के लिए, ट्यून करने के लिए। एंजॉय योर वीकेंड। और एक खूबसूरत गीत द किंग ऑफ हिंदी पॉप की आवाज में उषा जी के नाम है Den Haag।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आंखों में सिमट आई है। लता जी का एक नगमा, आसिक मनीत फरखेज फंड फिल्म स्वीकार किया मैंने, द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागी हुसैन ने गाकर सुनाए हैं। 020-363-0008 स्टूडियो का व्हाट्सएप है मेरे प्यारे सुनने वालों, अभी मौका है और जगह भी है आपके लिए गीत चलाने के लिए, तो अगर आप ऐप करेंगे ये कश आप उठाएंगे तो आपके लिए जरूर हम कोशिश करेंगे एक गीत चलाने के लिए। मार खून खडुल थे बस, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लोग खडुल हो जाते हैं en dat moet je niet worden als je naar Saturday Night Fever luistert. Je 5 घंटे का प्रोग्राम है और जिस तरह से ऐप आते हैं उसी हिसाब से गीत हम चलाते हैं, और मैं क्या करूं। अमस्टरडम सेंट्रम में सुन रहे हैं प्रोग्राम प्रभा जी एंड मैथ क्लाइन डॉक्टर इशाया, ब्यूटीफुल नाम इशाया, खनीत युली आप भरपूर दोनों लेकर खनीत फन मोये वीर फन युली साथ रखावन। एक गीत हमने तैयार करके रखा है प्रभा जी और इशाया जी, आप दोनों के नाम दार इन अमस्टरडम सेंट्रम।

लड़की बड़ी अनजानी है, अपनी ही रंग और ढंग में फिर से गीत सजाया गया है और हमने आप तक पेश किया है हीर ऑन यूआर सैटरडे नाइट फीवर में। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों 9 बजे की ओर, और बहुत सारे लोगों के लिए अभी गीत चलाना है। आप भी चाहते हैं तो नॉकमास 020-363-0008 पर आपको ऐप करना है। अमस्टरडम में इरेना या इरेना सुन रहे हैं प्रोग्राम, तो डंकीवेल आपके ऐप के लिए इरेना। और एक गीत हमने तैयार करके रखा है सागर मलिक, वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स हमारे हॉलैंड के अंडर में, इनकी आवाज में प्रख्तक बखलाए दौड़ माइस्ट्रो ज्वाला लक्ष्मण। पेश करता हूँ इरेना के लिए, ऑफ इरेना के लिए एडम्स डम्स।

सागर मलिक की आवाज मेरे प्यारे से नौलो की देखा एक ख्वाब तू ये सिलसिले हुए। अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे और प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, उजाला रेडियो से जुड़े हुए हैं स्वागती सरवन नायजी। तो डंकी वाल स्वाग आपके ऐप के लिए सरवन नायगी जी, एक गीत हमने तैयार करके रखा है आपके नाम करता हूँ। एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय दिस सॉन्ग, एंजॉय यू आर।

या ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, द जूनियर्स फ्रॉम सुरीनाम, ये था नवीन सरजू, बाखुदा तुम ही हो। 9 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, और वो भी 9 बजकर। शुभ रात्रि आप सभी को कहते हैं, नहील खुएनावन, वीकेंड है, शनिवार है, सभी मगन में है, सभी एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वो सुन रहे हैं प्रोग्राम टाउन में, बेसक है, भीरल है, और जो बॉक्स रहते हैं तो उनके जरिए, ब्लूटूथ के जरिए वगैरह वगैरह है, बस खस्त्रीन और एकदम कस के। अरे ऐसे ना करिए कि ब्यूटी के तोड़ तो करिए, मारदलों से तन ब्लै कि आप सभी भी अपने बाग बगीचे में एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम। एनिमेंस दिए इन्होंने बालकोन, वो बहुत सारे लोगों के दिन में ही है, मोबाइल में इसके नाम बालकोन अच्छे ऑफन शहर है, एंजॉय। 020-363-0808 पर बहुत सारे लोगों ने ऐप किए हैं, उन सभी के लिए गीत चला रहा हूं। हमारे लिस्ट पर नाम है स्वाग में इस वक्त हेर वाल्दो मरखरी जी, और उनके साथ भी है नेफ आसिफ और दुष्का। तो आप सभी को वहां हेर वाल्दो जी, मरखरी जी, आसिफ और दुष्का जी, एंजॉय योर वीकेंड, सो लुक खसेलख मेथलकार, और चुन किए हुए हैं उजाला रेडियो पर, नाउ डन माकुल मतो हेल माल ब्लाई। एक गीत हमने तैयार करके रखा है, दैट इज इंद्रनील रॉय, फोकस में सितम बीच स्विंगिंग, या मैं यूली करने वाला डांस, तो एंजॉय।

मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, कांटा छुप जाएगा। इंद्रनील रॉय की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, गीत हमने आप तक पेश किया है। और अब द लायन ऑफ बैठक रविंद्र सिंह सिवना जी हिस्सा लेंगे। और ये गीत जो है रतनाम शहर में भैया जॉनी कालीचरण प्रोग्राम से जोड़े हुए हैं, तो भैया जॉनी कालीचरण जी हमेशा चुन करने के लिए, साथ देने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गीत जॉनी कालीचरण आयत रतनाम, जो द लायन ऑफ बैठक रविंद्र सिंह सिवना जी गाएंगे, आपके नाम करता हूँ।

रविंद्र सिंह सिवनाथ जी की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, लाख जतन कड़ी है या ब्यूटीफुल सॉन्ग और एक गाना खेरमेज की तरह या दनिसत हीर लकम तलाई सर हैं। इस तरह जो जवान लोग गा रहे हैं तो बैठक का और भी मजा है। एंसदूनत खुद दविंद्र सिंह सिवनाथ जी इज होन एन वेरल्ड आर्टिस्ट आई डू दट सो खुद। और हमारे अंडर का जो दूर छुपे हुए था ये बैठक गान, इन्होंने फिर से जगा दिया है। और जब ही ये लोग गाते हैं आदि योंगर त्रांसोर एह बोंदरिंग उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों। 6 मिनट बाकी है सरे 9 बजने में, 6 मिनट ऑफ 4 o'clock फन हाल्फ 3। सुशीला चंद्रिका सिंह जी हम सल्फेन में प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, उजाला रेडियो से जुड़े हुए हैं। तो डंक यू वेल सुशीला जी, एंजॉय यू आर एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर। और गीत हमने तैयार करके रखा है आपके नाम करता हूँ द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागित हुसैन।

लू एक कली मुस्काई, और वो भी शहीद वागिद हुसैन की आवाज में हमने आप तक पेश किया है। सैटरडे नाइट फीवर है ये मेरे प्यारे सिनेमालो, और फिल्मी गाने नए पुराने फिर से जो गाया गया है, सजाया गया है, हमेशा ये प्रोग्राम में आप तक हम पेश कर रहे हैं। एंड इधर इन हीसन एक दरायरान आप देख रहे हैं। द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागिद हुसैन को हम पेश करेंगे प्रोग्राम में मेरे प्यारे सिनेमालो, और ये गीत जो है नाम करेंगे दनहाग शहर में जो रहती है। मीका मीका जी दांग किरल आपके ऐप के लिए चून कर निकलिए, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत दांग किरल शुक्रिया, धन्यवाद। डेज इफ छोड़िया

में तुझे बस आके कर लूंगा मैं बंद आंखें पूजा करूंगा मैं तेरी। लता जी का एक बहुत ही खूबसूरत गीत ओरिजिनल फ्रॉम द मूवी फकीरा, द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागिद हुसैन की आवाज। अगले गीत की ओर मेरे प्यारे सुनोलो, हम आपको ले चलते हैं। संजय योढ़ा गीत गाकर सुनाएंगे और इसे हम नाम करेंगे आईफी जहांगीर, जो हम सदाम में रहते हैं, हमेशा सुनते हैं, साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं। शुक्रिया डंकी वेल आईफी, एंजॉय यू आर, एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर और ये नगमा आपके नाम करता हूँ।

या किस लिए मैंने प्यार किया, किस लिए मैंने प्यार किया। प्यार करके पछता रहे हैं, प्यार करना इतना आसान नहीं। प्यार इस ओकन लुक्स है, और प्यार अगर आप करें तो उसे निभाना चाहिए। तो दत्त निमेर खान मार आलते चे बेसर फोड़ दूं। प्यार एक ऐसा चीज नहीं कि जिस पर दिल आ जाए उसे प्यार हो जाए, नहीं। प्यार है गहराई, प्यार एक एहसास है जो आप महसूस कर सकते हैं एकदम आपके दिलो दिमाग में, आपके नस नस में, आपके खून में रग रग में दौड़ रहे हैं, उसे कहते हैं प्यार। मेरे प्यारे सुनो वालों, अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे, और आमस्टरडम में भैया इकबाल ख्वाजा प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। तो इकबाल जी डंकीवेल आपके ऐप के लिए, इकबाल ख्वाजा जी आए थे आमस्टरडम। गीत जो हमने तैयार करके रखा है चलाएंगे आपके नाम।

मैंने प्यार किया है एक बेवफा से, द किंग ऑफ इंडी पॉप उमर वागी तुसैन, मेरे प्यारे सुनने वालों। और इस घंटे का आखिरी गीत रिया कल्लू जी के नाम हम करेंगे आइटम। धन्यवाद रिया कल्लू जी आपके ऐप के लिए ये नगमा आपके नाम करता हूँ शेखर कुमार। इस गीत के बाद ब्रेक, मेरे प्यारे सुनने वालों, ब्रेक के उस पार आप सभी से हम जरूर से फिर मिलेंगे।

मेरी सी सूरत आंखों में मस्ती, अरे हाय हाय मोए। दिस इज यू एंड मेरे प्यारे सुनो लो, उजाला रेडियो है ये, आज की खूबसूरत शनिवार वारत या अम्बीच कैसे सब बोले हैं, एक कॉमनी तेज मेरे माक नहीं आज मन उनमें से सुन सूला, हाँ सूला आवन और शायद सूला नख भी होंगे क्योंकि बहुत गर्मी है। मारत इज हियर स्टूडियो में बहुत कूल है और खसेलर भी है। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप जहां पर भी हैं वहां पर भी खसेलर है। अच्छा, 3:03 मेरे प्यारे सुनने वालों, 10:10 गुजर चुके हैं। मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे, आपका यारों का यार, और आप सुन रहे हैं सैटरडे नाइट फीवर। मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको मालूम होना चाहिए भी कि अगले हफ्ते मैं बुधवार और बृहस्पतिवार दो वुंसख एंड दोनों रख बैनकर वुंसख में बैक टू द फ्यूचर रात्रि में 6-9 बजे और दिल की आवाज़ हम पेश करेंगे डोंडरहाफ्ट 28 रात्रि में 8-11 बजे शनिवार को देर तक से दम बहने करनी थी। या आपको मालूम रहे दम बहने करनी दम बहने कर फोकस में इससे स्वेर एक वेट नहीं थे दत फर्टेल एक वाल फोन ट्विक। सुरीनाम से हेमंत और नीता प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। याद रखें व्हाट मिस मेड मिल्चेस मार एक हैप्पी यूली मिल अलमल वेल ऑन्फंग एंड फॉक्स मैं यूली फॉर मैं होक। कोई बात नहीं, आप चून किए हुए हैं और आनंद ले रहे हैं आज की प्रोग्राम के साथ नगमाओं के साथ। तो हेमंत जी और नीता जी आज सुरीनाम डांक यूली वेल एक गीत जो अभी अभी रिलीज हुआ है किंग सेलेक्टा सविता सिंह और साधना लीला द गोलगप्पा सॉन्ग हेमंत जी के लिए और नीता जी के लिए अच्छी एंड फोकस मैं यूली फॉर मैं होक। कोई बात नहीं, आप चून किए हुए हैं और आनंद ले रहे हैं आज की प्रोग्राम के साथ नगमाओं के साथ। तो हेमंत जी और नीता जी अच्छी नाम डांक्यूली वेल एक गीत जो अभी अभी रिलीज हुआ है किंग सेलेक्टा

या बनी है गोलगप्पा और बनी है गोलगप्पा। सेलेक्टा किंग सेलेक्टा सविता सिंह और साधना लीला जी की आवाजें। हील माल फेयर्स फंड पेयर्स मेरे प्यारे सुनने वालों द गोलगप्पा सॉन्ग वर्चुअल डी। मेरे प्यारे सुनने वाले अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे और हमारे प्रिय सूरीनाम में ब्लाउ ग्रॉन्ड ब्लाउ ग्रॉ ब्लाउ ग्रॉन्ड वहां से सुन रहे हैं प्रोग्राम जानी सर। तो जानी सर दंकीवेल आपके ऐप के लिए फैन दच अफगस्तेंबेंट अप यू आर दार इन मोई प्रख्तक सूरीनाम। मैंने गीत तैयार करके रखा है वन ऑफ द फाइनेस्ट सांगरेस इन दिनों का फारसी अलाइज मोहम्मद खान जी, इनका गाया हुआ गीत। Ik heb er 2 vandaag in de playlist. Later komt er waarschijnlijk nog 1. Ik moet even kijken. Lekin ye geet. Aapke naam karta hoon. Janisar. Daar in het prachtige blauwgrond. Waar iedereen naartoe gaat. Altijd om lekker.

फर्सिया लैज मोहम्मद खान जी की आवाज, दीवाना हुआ बादल। दिस इज यू आर मेरे प्यारे सुनने वालों, 8 मिनट बाकी हैं सरे 10 बजने में, जबकि हम आपको ले चलेंगे अगले गीत की ओर। और हमारी लिस्ट पर नाम है मर्स ब्रुक का, हिरेंद्र और चित्रा जी, थैंक यू लिवेल आपके ऐप के लिए। एंजॉय यू आर, एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर, एंजॉय यू वीकेंड। हिरेंद्र जी और चित्रा जी, ये गीत कुमार सानू और अभी दाराम जान की आवाज़ में, आप दोनों के नाम।

नजर के सामने और जिगर के पास तुम रहते हो या कोई रहता है और वो है तुम। ब्यूटीफुल आवाजें कुमार सानू जी द टाइगर और अभी डारम जान। मेरे प्यारे सुनने वालों, हम आपको ले चलते हैं अगले गीत की ओर और नॉन अदर देन शेखर कुमार जी की आवाज में गीत हम पेश करेंगे। शेखर कुमार जी गीत गाएंगे और ये गीत जो है हम नाम करेंगे हमसे नाम का सत्या। सत्या जी आपके नाम करता हूँ फेन द चाफम तो ऑफ बेंट वासनी बेंट और भरपूर आप एंजॉय कर रहे हैं। ये गीत आपके नाम करता हूँ, एंजॉय।

0: ना।
1: चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। शेखर कुमार की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, हमने ये खूबसूरत गीत आप तक पेश किया है। पांच मिनट मेरे प्यारे सुनने वालों गुजर चुके हैं सरे 11:05 ओवर क्लॉक फन हालफ हालफ एलफ। धीरे धीरे वक्त निकला जा रहा है, मार बसेन तो 12 बजे मेरा ये प्रोग्राम सेहत रही नाइट फीवर 12 बजे तक आपका दिल हम बहलाएंगे। लेकिन आपको भी मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे सुनने वालों कि 11 से 12 बजे नखावाली मसूल नंबर सराय हमेशा की तरह और आज भी जेनी आइट अम्सरडम ओस दंकीवाल जेनी आपके ऐप के लिए फेन द चौका फस्टेम्बेन हील माल फेयर सन पेयर्स अलीचे फन टायरा ऑफ टीरा माइक दें टायरा एक चटनी पाश हम आप तक पेश करेंगे। दिस इज फॉर

या ठहरा मेरे प्यारे सुनो, मैं थार चटनी बैश। हमने ये गीत आप तक पेश किया है अतिस हिल वाल फेयर सन फेयर्स। मेरे प्यारे सुनो वालों, अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे और ये गीत जो है हम नाम करेंगे अल्फा नंदराय में जो रहती हैं कमला। कमला डंकी वेल लेकर आप खस्तम तो प्यू आर कमला जी, एंजॉय योर वीकेंड। और ये है निशल बी और रोहित चांद, खूबसूरत गीत गाएंगे और आपके नाम करता हूँ।

या तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, रोहित चांद और निशल भी। ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनवालो, एट दिस क्वार्ट फॉर एलफ स्टूडियो तहत मेरे प्यारे सुनवालो, 11:15 का वक्त है और ले चलते हैं आपको अगले गीत की ओर। फारसिया लाइस मोहम्मद खान जी गीत गाएंगे और इसे हम नाम करेंगे सूरीनाम का। रिका खुदाबख्श जी जो आज पहली बार प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो रिका खुदाबख्श जी थैंक यू, शुक्रिया आपके लिए। फारसिया का गाया हुआ ये नगमा मैं आपके नाम करता हूँ।

जाने जान ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें मैं रात दिन यहाँ से वहाँ। फर्सिया जी प्रख्त पखलाई दूर माइस्त्रो ज्वाला। मेरे प्यारे सुनो लो अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे। एंड दैट इज वनिता विली और राउती रामरूप, कुछ त्रिनिपोप हो जाए जिसे हम नाम करेंगे। यूएस ऑफ ए अमेरिका टेक्सस में जो हमेशा चून किए करते हैं और ऐप करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेल थैंक यू अजय और सुनीता जी और जितने लोग भी आप लोगों के साथ सुन रहे हैं ये गीत आप सभी के नाम।

अनीता विली और रवती राम रूप मेरे प्यारे सुनने वालों, माय हार्ट इज बीटिंग, कीप ऑन रिपीटिंग, आई एम वेटिंग फॉर यू, ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, सेवा में जो पेश हुआ है। इस घंटे का आखिरी गीत पेश करेंगे और पेश करेंगे नाम वो जो इस वक्त काम पर है और चुन किए हुए हैं उजाला रेडियो पर, टोनी इसरी अहित अलमेर, थैंक यू वेल, धन्यवाद आपके ऐप के लिए, दिल लगाकर काम करना एंड एंजॉय यू आर, ये गीत आपके नाम। इस गीत के बाद ब्रेक होंगे मेरे प्यारे सुनने वालों और मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

सागर मालिक की आवाज। मेरे प्यारे सुनने वालों, कौन है जो सपनों में आया और कौन है जो दिल में समाया। प्रख्तक फलाए दौड़ माएस्त्रो ज्वाला। मेरे प्यारे सुनने वालों, 9 मिनट गुजर चुके हैं 11:05 का ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर का आखिरी घंटे में मान पड़े हैं, क्योंकि रात्रि में 12 बजे तक आपका साथ हम देंगे। 13 मेरा साथ रहेंगे टिल मिडनाइट। एपर्स के लिए गीत चला रहा हूं मेरे प्यारे सुनने वालों, और इस घंटे में खावा अली मरुस्तख नुमरसराय, और हमारी लिस्ट पर नाम है रोहतक शहर का रोहनी कल्लू। थैंक यू वेल रोहनी कल्लू जी, आपके ऐप के लिए एक गीत शेखर कुमार की आवाज में हमने तैयार करके रखा है, आपके नाम करता हूं। थैंक यू वेल।

जहां आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। शिखर कुमार की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, सेवा में जो हमने ये गीत पेश किया है शिखर कुमार की आवाज में, और अगले गीत जो है द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागित हुसैन गीत गाएंगे। मेरे प्यारे सुनने वालों, सेहत रही नाइट फीवर में ये नगमा हम नाम करेंगे बरेरा शहर का, मफराव इन मनेर बिहारी जी जो हमेशा सपोर्ट करते हैं, चुन किए करते हैं, सुनते हैं प्रोग्राम, बहुत बहुत धन्यवाद। डंकी वेल मफराव इन मनेर बिहारी जी एट बरेरा, ये गीत आप दोनों के नाम।

मेरा अंदर एक मंदिर है तेरा, द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागी तो सैन, मेरे प्यारे सुनने वालों। और इस गीत के बाद हम आपको ले चलेंगे आर पिता श्रीवास्तव की ओर। खूबसूरत गीत ये गाकर सुनाएंगे हीरा निवाड़।

ये समा समा है दिलदार का, किसी की इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा। सुन लो हसीना, अर्नोल्ड मलाहे और रुक। Remember, this is UR Saturday Night Fever Live from UR Studio Rotterdam, which is being recorded.

अर्नोल्ड मला है मेरे प्यारे सुनने वालों, और लुक, और ये जो गाने वाले हैं खूबसूरत गीत देवन गोविंद, ऐ सनम जिसने तुझे ये चांद सी सूरत दी है।

0: होती है।
1: देवन गोविंद की आवाज में गीत मुकेश का आप सभी ने सुने हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। और ले चलता हूँ हमारे भारत देश का एक फाइनेस्ट सिंगर साउथ खान, इनकी आवाज में रवि साहब का ये नगमा।

जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। साउथ खान की आवाज सैटरडे नाइट फीवर में आपकी बाढ़। मेरे प्यारे सुनने वालों, निजाम वागिद हुसैन की आवाज में गीत आप तक पेश कर रहा हूं।

घर तुम भुला ना दोगे, निसाम वाकित हुसैन, मेरे प्यारे सुनो लो, हियर ऑन योर सैटरडे नाइट फीवर में अब निसाम के छोटे भाई इबो वागी तुझे, मैंने तुझे मांगा तुझे

मैंने तुझे मांगा तुझे पाया है, और तूने मुझे मांगा और मुझे पाया है। इबो वागी तुसेन मेरे प्यारे सुनने वालों, इबो के बाद सेवा में मैं देख रहा हूं विनोद राठौड़।

ये दुनिया वाले पूछेंगे कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना। ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, विनोद राठौड़ की आवाज। घड़ी की तरफ मैं देखूं तो 13 मिनट बाकी है 12 बजने में, 13 मिनट 4:12 और 12 बजे तक आपका साथ हम देंगे मेरे प्यारे सुनने वालों। लकी सिंह को पेश कर रहा हूं आंखें तेरी, गीत का बोल है और एंजॉय।

ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ लकी सिंह, मेरे प्यारे सुनने वालों, आंखें तेरी। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं एम की ओर, मेरे प्यारे सुनने वालों। मैं देखता हूं कि शायद दो नगमाएं और आप तक हम पेश कर पाएंगे, उसके बाद हम यहां से रुखसत होंगे। सुबी, मैं शायर तो नहीं

मैं शायर तू नहीं सुबी की आवाज। मेरे प्यारे सुनवालो, वक्त आ गया कि मैं आखिरी नगमा पेश करूं। मेरे प्यारे सुनवालो, इस गीत के बाद हम यहां से रुखसत होंगे। आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जितने लोग भी ऐप किए हैं, साथ दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद और आशा करते हैं कि जिस तरह से प्रोग्राम आज हमने सजाए हैं, बनाए हैं, आप सभी ने भरपूर भी पसंद किए हैं। Volgende week, zaterdag, dan ben ik er niet. 30 mei ko hum nahi rahenge. Lekin usse pehle, woensdag 27 aur donderdag 28, pesh karenge program Back to the Future aur Dil Ki Awaaz. Mere pyare suno, raha phool to fir khilenge aur raha ye khoobsurat zindagi to natürlich hum zarur fir milenge. सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज़। टेक केयर और रिमेंबर, आई लव यू ऑल।

गुलाबी रात के साए तले इन मासूम बच्चों की रात कितनी भयानक है, कितनी काली है।

जब भी देश की बात होती है ऐसे लोग मजाक में उड़ा देते हैं। ये लोग जो पीते हैं वो शराब नहीं, अनगिनत लोगों का खून है। और आज जब बच्चे भूख से पिलकते हैं तो ऐसे लोग अनाज पांव तले कुचलते हैं। ऐसे फूल इनके हाथों कुचले जाते हैं, मसले जाते हैं। लोगों के पास तन ढकने को कपड़ा नहीं और इन्हें तन ढकने का शौक नहीं। ये गुलाबी रात वाले काली रात के जिम्मेदार शबाब और शराब के नशे में चूर, मखमल के बिस्तर पर सोने वाले इतना भी नहीं सोचते कि आज इन्हीं की रक्षा के लिए इनके अपने भाई

हे सुन वालो, मैं हूँ आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहाँ प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

0: दिस इज उजाला रेडियो।
1: भैया सिपाही की जिंदगी का क्या भरोसा, आज की रात इकट्ठे गुजारेंगे। सिपाहियों को वो थीम सॉन्ग याद नहीं, आज गालो मुस्कुरालो महफिलें सजालो, कौन जाने कल कोई साथी छूट जाए।